0: को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद कर सोई इंटरनेट पैकेज नया चरण को लगी गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लगी एक महीना फ्री इंटरनेट वायनेट अब सब कनेक्टेड
1: हमी जन्मदात नहीं सिखारियों सिखारी पूरे दैलेख मलाई चाहिए
2: पीएफएक्स सिनेमाज कोराही दश नारायण पुरसौडी कुला दाङमा एक्शन नायक विराज भट्टद्वारा अभिनीत भव्य प्रदर्शन भइरहेको छ नेपाली कथानक चलचित्र राम

0: प्रोडक्टहरु कोकोनट चोकोनट भिटा मिल्क बटर फ्राइड क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल व्हीट बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस कोदोको डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस
0: अडगुरी।

0: बाय नेट को बाय वन गिफ्ट वन फ्री ऑफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा सुई इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट बाय नेट अब सब कनेक्टेड।
1: नाक कान तथा घाटी रोग को उपचार सेवा अब सुवर्ण मेडिकल हल घोराही दांग में।
2: नाक कान तथा घाटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुवर्ण बुढ़ामगर द्वारा प्रत्येक दिन बिरामी चेक जांच भइरहेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौं। सम्बन्धित रोग का बिरामीले समयमै सम्पर्क गरी आफ्नो रोग को पूर्ण निदान गर्नुहोस्।
1: अन्य सेवाहरू
3: हाट जोर्नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर कृष्ण तिमिल सिन्हा द्वारा दैनिक बिरामी चेक जांच भइरहेको जानकारी गराउँदछौं।
4: सुगर थायराइड तथा हार्मोन रोग विशेषज्ञ डाक्टर एसएन यादव द्वारा प्रत्येक महीना को दोस्रो शुक्रवार बिरामी चेक जांच भइरहेको जानकारी गराउँदछौं।
3: बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर सन्दीप पोखरेल द्वारा दैनिक बिरामी चेक जांच भइरहेको जानकारी गराउँदछौं।
1: प्रत्येक दिन डाक्टर नवराज केसी द्वारा बिरामीहरूको चेक जांच तथा उपचार सेवा।
5: फोनबाट पनि नाम दर्ता गर्न सकिनेछ।
6: सम्पर्क सुवर्ण मेडिकल हल घोराही 14 आर्मी रोड। सम्पर्क फोन नम्बर 082-561-694। सम्पर्क मोबाइल नम्बरहरू 98-578-30-145, 98-478-30-153 र 98-49-41-944।

0: को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा सोही इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वायनेट अब सब कनेक्टेड।
1: तपाईं यति बेला सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम ट्रिपिङ टाइम। यदि तपाईँ पनि आफूलाई मन परेको गीत सुन्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 5784594 डायल गरेर आफूलाई मन परेको गीत सुन्न सक्नुहुन्छ।

वाय नेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद कर सोई इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वाय नेट अब सब कनेक्टेड

0: प्रोडक्टहरु कोकोनट चोकोनट भिटा मिल्क बटर फ्राइड क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल विथ बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस कोको डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस
0: अडगुरी।

0: बाय नेट को बाय वन गिफ्ट वन फ्री ऑफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट को 2700 में खरीद गर्दा सुई इंटरनेट पैकेज नया जड़ान को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट बाय नेट अब सब कनेक्टेड
1: मध्य पश्चिम चाइन चेक यति बेला बेलुकीको 5 बजेको छ।

राम राम सन्जेक पाँच बजे थारूभाषक मध्यपश्चिम खबर में सारिक राम चौधरी हार्दिक स्वागत बा। इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुर दाङसे आफ्नो नाउँमा रलक सरकारी जग्गामा करगिलक अनाधिकृत संरचना 15 दिनभित्र हटाई निर्देशन दिराखल। कार्यालयले आज एक सूचना जारी गर्दै अतिक्रमण कैकन बनागिलक घर टहरा लगायतका भौतिक संरचना सम्बन्धित व्यक्ति अपनै जो हटाकन जग्गा खाली गर 15 दिनको समय दिलक हो। कार्यालयका अनुसार तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 5 ख किता नम्बर 2683 का कुल 1862.46 वर्गमीटर क्षेत्र फलक जग्गा अनाधिकृत रूपमा कब्जा करगिल बा। उक्त जग्गामा कुछ व्यक्तिको नक्सी नियम विपरीत घर टहरा निर्माण कैकन भोग चलन कर्ती आरल। प्रहरी नायब परीक्षक होम बहादुर पराजुलीद्वारा हस्ताक्षरित उक्त सूचनामा तोगिलक 15 दिनको समय सीमा

करोड़ 36,21,261 रूपया बजेट विनियोजन हुईलप त्यासर त्रैमासिक सम्म 83,31,10,405 रूपया 24 पैसाकेल खर्च हरहल कुल बजेट का 39.51% हो। विवरण अनुसार चालू तर्फ 1,36,41,37,103 रूपया 26 पैसा विनियोजन, करगिलकमा 1,37,12,670 रूपया 15 पैसा निकासा हुई रह। ऊ मध्य 68,54,96,687 रूपया 24 पैसा खर्च हुई देखिल्बा। चालू खर्चक प्रतिशत 51.50 रहलबा। उसनाको पूंजीगत हर 77,94,84,158 रूपया विनियोजन हुईलकम 30,19,11,536 रूपया 21 पैसा निकास हुईलसेफे। खर्च भरी 14,76,13,718 रूपया के लोहरहल। पूंजीगत खर्च 19% में सीमित हुईबेर विकास निर्माण का काम से गति लिह निशेक्लक स्पष्ट देखिल्बा। क्षेत्रगत रूप में हेरबेर आर्थिक विकास क्षेत्र में 15.21% हो। सामाजिक विकास क्षेत्र में 52.77%, पूर्वाधार विकास क्षेत्र में 20.11%, सुशासन तथा अंतर सम्बन्धित क्षेत्र में 37.30% और कार्यालय संचालन तथा प्रशासनिक खर्च 49.51% रहलबा। वर्ष का 3/4 समय बीत सकते पूंजीगत तथा पूर्वाधार विकास और खर्च न्यून रलक होते विकास योजना को कार्यान्वयन में प्रश्न उठिल्बा। स्थानीयवासी से ढील काम अंतिम समय में हतार में योजना संपन्न करना प्रवृत्ति और बजेट फ्रीज होना जोखिम बढ़लक बतवाल। संजीवनी टीचिंग हस्पिटल घोराही दांग ओ सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बीच उपचार सेवामा छूट प्रदान गर्न उद्देश्यले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हो रहल। यी समझदारीसँग सशस्त्र प्रहरी बलमा कार्यरत अवकाश प्राप्त कर्मचारी तथा हुकनक आश्रित परिवार से आप अस्पतालमा उपचार सेवामा विशेष सहुलियत पैना हो रहल। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 29 गढ हेडक्वाटर ज्वालामा दाङ ओ संजीवनी टीचिङ हस्पिटल घोराईबीच अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपक रोका ओ सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी उपरीक्षक एसबी एदु कुमार कार्केसे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर कर्लखुट। सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत अस्पताल से सशस्त्र प्रहरी बल से आबद्ध कर्मचारी अवकाश प्राप्त सुरक्षाकर्मी तथा हुकनक का आश्रित परिवार हन विभिन्न स्वास्थ्य सेवा में 10-50% सम्म छूट देन सहमति कर्लक जनागिल्बा। अस्पताल का अनुसार उक्त सहुलियत सुविधा प्राप्त कर डेरम्या कनक्से आपन परिचय खुल्ना आधिकारिक कागजात सशस्त्र प्रहरी बलमा कार्यरत तथा अवकाश प्राप्त व्यक्तिसँगको नाता प्रमाणित गर्न कागजात वा सम्बन्धित कार्यालयसे जारी औपचारिक पत्र पेश गर पर्ने बा। ऊ समझदारीसे सशस्त्र प्रहरी बलसे आबद्ध कर्मचारी तथा हुकनकका परिवार हन सहज व सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर सहयोग पुग्न अपेक्षा गरिकलक अस्पताल प्रशासन जना राखल। ओ नेपाल निवृत्त शिक्षक समाज शान्तिनगर ओ दंगी शरणको चौथो परिषद शान्तिनगर सात खैरनी स्थित साना किसान सहकारी संस्थाका सभाकक्षमा संयुक्त रूपमा सम्पन्न हो रहल। नेपाल निवृत्त शिक्षक समाज शान्तिनगरका अध्यक्ष नन्दलाल पाण्डेको अध्यक्षता एवं जिल्ला अध्यक्ष गोविन्द पौडेलको बरपौनामा एवं जिल्ला उपाध्यक्ष पद्मप्रसाद शर्माका विशिष्ट आतिथ्यमा संचालित संयुक्त चौथो परिषदमा बोल्ना वक्ता हुनुहुन्छ। नेपाल निवृत्त शिक्षक समाजमा आबद्ध सबको आजीवन सदस्य हुनुहुन्छ। यी संस्था पनि समझकन नेतृत्व वर्गहन सहयोग गर पर्ना ओ जीवन सक्रिय बनाइकला यी संस्थान सक्रिय बनाइ पर्ना ओस्तक निवृत्त शिक्षक कनकमा निहित क्षमता प्रभावमा निम्ति स्थानीय सरकारसे सहकार्य गर तत्पर रह पर्ना विचार व्यक्त गरल रह। संयुक्त चौथो परिषदमा शान्तिनगरका सचिव टेक बहादुर पाण्डेसे शान्तिनगरका सांगठनिक प्रतिवेदन ओ कोषाध्यक्ष गोविन्द जीसीसे आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरल रह। ओस्तक दंगी शरणका अध्यक्ष लक्ष्मण देवकोटासे दंगी शरणका सांगठनिक प्रतिवेदन ओ अध्यक्ष शरण कमल केसी से आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करल रह। दुनु पारिका का प्रतिवेदन में व्यापक छलफल कैकन कुछ बुदा थप कैकन पारित करगिल रह। उक्त अवसर में परिषद सफलता का शुभकामना मंतव्य व्यक्त करना में प्रमुख अतिथि जिला अध्यक्ष गोविन्द पौडेल, विशिष्ट अतिथि जिल्ला उपाध्यक्ष पद्मप्रसाद शर्मा, जिल्ला सदस्य मोहनलाल ओली, विनोद राणा, आजीवन ज्येष्ठ सदस्य लीला बहादुर डांगी, साना किसान सहकारी संस्था खैरेनीका अध्यक्ष हेमन्त कुमार योगी लगायत रहल रह। ऊ अवसरमा शान्तिनगरको 11 जना लघु आजीवन सदस्य हुनकला आजीवन सदस्यताका प्रमाणपत्र सहित समाजका हाम्रो चिनारी नामक स्मारिका रजत विश्वासका 4 समाजको लोगो अंकित ब्याज समेत वितरण गरिल रहेको।

फुलठा ताजुक थारू भाषक मध्य पश्चिम खबर अपरह काल संजाफे थारू भाषक मध्य पश्चिम खबर सुन सिक्ने बाटी अखस खबर में समाचार कक्ष कसबको संग्रह संग मैं शालिक राम चौधरी विदाई तू रिडी मध्य पश्चिम उनिटी रवि राम राम।

0: आवाज पश्चिम नेपाल को आवाज आवाज हिंदको आवाज यो हो रेडियो मध्य पश्चिम एफएम 91.4 MHz।
1: स्वास्थ्य क्षेत्र में विश्वासिलो ठाउँ, कोई कसैलाई रोग लागे गोखा अस्पताल जाऊ। सर्जन, फिजिशियन, हाड़ जोड़नी, नसा, प्रसूति, रेडियोलॉजी।

0: वाय नेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट को 2700 में खरीद कर सुई इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वाय नेट अब सब कनेक्टेड
1: मध्य पश्चिम जान चेक यति बेला बेलुकीको 7 बजेको छ।

0: बाय नेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा सुई इंटरनेट पैकेज नया जडान को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट बाय नेट अब सब कनेक्टेड
1: मध्य पश्चिम टाइम चेक यति बेला रात्रि को 9 बजे को

6.9 इंच को शानदार डिस्प्ले, AI पावर्ड कैमरा, 2 वर्ष को वारंटी सहित Redmi A7 मा 5200 mAh तथा Redmi A7 Pro मा 6000 mAh पावरफुल बैटरी को साथ थप अत्याधुनिक विशेषताहरूले तपाईको मन जित्छ बारम्बार।